0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद ईरान सख्त गिर मौकिफ पर कायम है। ट्रंप मुबैना तौर पर इस हफ्ते के आखिर में एक बड़ा हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शराइत के साथ इसे मनसूख करने पर तैयार हैं। अमरीकी सदर ने हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान और मशरक वुस्ता के दीगर ममालिक ने अमरीका से कहा है कि वो किसी भी ऐसे हमले को रोक दे जो माहदे पर इतफाक के दायरा कार में हो। इस माहदे में अबनाए हुरमस को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान से लाहक जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। ट्रंप ने लिखा कि दरख्वास्त की बुनियाद पर उन्होंने हमला मनसूख करने पर रजामंदी जाहिर की, इस शर्त पर कि वो तेजी से डील कर सकें। ईरान के सरकारी मीडिया ने इतवार के रोज एक आला ईरानी दिफाई एहलकार के हवाले से कहा कि मुल्क दुश्मन के हालिया बयानात को एक हकीकी और काबिल एतबार खतरे के तौर पर देखता है, चाहे इसे नफसियाती हरबों के तौर पर पेश किया जाए। एहलकार ने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि ईरान ना तो चौकसी छोड़ेगा ना ही गैर फाल रहेगा। एहलकार ने मजीद कहा कि ईरान अपनी फौजी तैयारी में इजाफा और दिफाई सलाहियत को मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के शिमाल मशरकी पानियों में एक कश्ती में आग लग गई। तलाश और बचाव की मुल्की एजेंसी का कहना है कि इतवार की शाम 4 बजे तक 5 अफराद हलाक हो चुके थे और 41 दीगर लापता थे। एजेंसी का कहना है कि आग दिन के अवाइल में उस वक्त लगी जब कश्ती मशरकी जावा सूबे के मादुरा जजीरे के पास से गुजर रही थी। एजेंसी का कहना है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कश्ती 271 अफराद को मशरकी जावा के सूरा बाया से जनूबी सलावेसी सूबे के मकासर लेकर जा रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। जापान के शिमाली शहर आओमोरी में मौसम गर्मा के मशहूर तरीन मुल्की त्योहारों में से एक के आगाज पर शानदार फ्लोट्स की परेड हुई है। त्योहार में सालाना तकरीबन 10 लाख अफराद शरीक होते हैं। इसकी सबसे बड़ी कशिश नेबुता कहलाने वाले दियोहेकल फ्लोट से वो तारीखी जंगजुओं, अफसानवी शख्सियात और दीगर मौजूआत की अक्कासी करते हैं। इतवार को इस साल के त्योहार के पहले दिन शाम 7 बजे 16 फ्लोट से जुलूस शुरू हुआ। हर फ्लोट की ऊंचाई तकरीबन 5 मीटर थी। शुरका ढोल और बांसुरी बजाते हुए 3 किलोमीटर से ज्यादा तवील रास्ते पर चले पुरजोश रक्कासों के एक ग्रुप ने माहौल को मजीद पुर रौनक बनाने में मदद दी। 40 के पेटे की एक तमाशाई खातून ने कहा कि वो पहली बार त्योहार देखने पर बहुत पुरजोश हैं। उन्होंने बताया कि वो नेबुता कारीगरों की साल भर की कोशिशों में शामिल जोश व खरोश महसूस करती हैं जो फ्लोट्स बनाने के लिए की जाती हैं। त्यौहार जुमे तक जारी रहेगा। शायकीन आखिरी दिन आतिशबाजी और बहरी फ्लोट्स का जुलूस बयक वक्त देख सकते हैं।
1: और अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की वजीर खजाना का कहना है कि वजारत ने अमरीकी वजारत खजाना के साथ मिलकर जापानी येन खरीदने के लिए गुज़श्ता हफ्ते करंसी मंडी में मुदाखलत की थी। ख्याल किया जाता है कि गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क की तिजारत में डॉलर के मुकाबले में जापानी करंसी में 5 येन के तेजी से इजाफे के पीछे यही मुश्तरका मुदाखलत कारफरमा है। जनूब मगरबी प्रीफेक्चर कुमामोतो में पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ये प्रीफेक्चर गुज़श्ता हफ्ते 7.1 मैग्नीट्यूड के जलजले से मुतासिर हुआ था। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ नए हमलों को मनसूख करने के ऐलान के बावजूद तेहरान सख्त गिर मौकफ पर कायम है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।